0: Ali is one of those children who, with your assistance, has the honour of being a Hafiz. And that too from only £29 per month. Help UKIM by sponsoring a Hafiz and get rewarded by up to 70 times blessings. For donations, call now or visit ukim.org.
1: होशियार रहें। कुछ लोगों ने फ्रॉड का एक नया तरीका अपना लिया है। वो आपके घरों पर इंस्पायर एफएम और दिगर चैरिटीज के नाम पर चंदा मांगने आते हैं। इनको कुछ भी देने से पहले इनका आईडी कार्ड या फिर इस चैरिटी से राब्ता करके तसल्ली कर लें कि कहीं आप गलत शख्स को रकम तो नहीं दे रहे। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।

0: आजकल लोग सड़कों पर चलते फिरते चोरी के मोबाइल फोन, लैपटॉप, कैमरा और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें फरोख्त करते हैं। चोरी की चीज़ें खरीदने का मतलब आप इस चोरी में शामिल हैं। इसलिए चलते फिरते लोगों से चीज़ें हरगिज़ ना खरीदें, बल्कि ऐसे अफराद के बारे में पुलिस को आगाह करें। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।
1: Inspire 105.1 FM. I have

0: Kelly is one of those children who, with your assistance, has the honour of being a Havis. And that too from only £29 per month. Help UKIM by sponsoring a Havis and get rewarded by up to 70 times blessings. For donations, call now or visit ukim.org.
1: आजकल एक नया फ्रॉड चल रहा है। आपको मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ कंपनियों और मुख्तलिफ बैंकों के नाम से टेलीफोन करते हैं और आपको लॉटरी जीतने की खुशखबरी देते हैं और फिर जोंसा देकर आपसे रकम वसूल करके भाग जाते हैं। ऐसी तमाम फोन कॉल से होशियार रहें। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।
2: From the studios of Inspire FM, the time is now 3 o'clock.
3: From the heart of Bedfordshire in Luton on 105.1 FM, this is Inspire FM News.
4: This is the national and international news today, Friday, 7th of August, for Inspire FM, read by Shahin Mirza. Trump says Iran cannot go on much longer. Hormuz deal close. Meta fined $567 million in largest child safety ruling against social media giant. Several dead after Thai teen shoots grandparents and school teachers. Passengers facing more disruption after 90-second power outage. Arrests in Norfolk town as disorder continues for third night. Trump again tries to limit US birthright citizenship with new executive orders. Artificial intelligence used to design brand new viruses. And that concludes today's news roundup. Next, the Urdu news with Mukarram Abbas.
5: Inspire FM ki Urdu news ke saath main hoon Mukarram Abbas. Sabse pehle aaj ki headlines par ek nazar. अमरीकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बोर्ड ऑफ पीस ने गजा में हमास के साथ गैर मुसल्ला होने का मुआहदा कर लिया है। तुर्किया के प्रेसिडेंट ने लेबनान के खिलाफ इसराइल के जारी हमलों को इंसानियत के खिलाफ संगीन जुर्म करार दे दिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने नौजवान मुजाहरीन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ रोकने और नाबालिग बच्चों की फौरी रिहाई का हुक्म जारी कर दिया। सामीन, ये थी इस वक्त की अपडेट्स। मजीद अपडेट्स के लिए सुनते रहिए इंस्पायर एफएम।
3: ऑलवेज अप टू डेट विद एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग लोकली, नेशनली एंड इंटरनेशनली। दिस इज इंस्पायर एफएम।

इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है, ये दिल का नगर है कि मदीने की फजा है। खुर्शीद तेरी राह में भटकता हुआ जुगनू, महताब तेरा रेजा नक्शे कफे पा है। वल्लैल तेरे साये गेसु का तराशा, वल असर तेरी नीम नगाही की अदा है। रग रग ने समेटी है तेरे नाम की फरियाद, जब जब भी परेशान मुझे दुनिया ने किया है। रग रग ने समेटी है तेरे नाम की फरियाद, जब जब भी परेशान मुझे दुनिया ने किया है।

इल्हाम की रिमझिम, कहीं बख्शिश की कटा है, ये दिल का नगर है कि मदीने की फजा है। सांसों में महकती हैं मनाजात की कलियां, कलियों के कटोरों पे तेरा नाम लिखा है। खालक ने कसम खाई है उस शहरे अमा की, जिस शहर की गलियों एक बार तेरा नक्शे कदम चूम लिया था, एक बार तेरा नक्शे कदम चूम लिया था। अब तक ये फलक शुक्र के सजदे में झुका है, सूरज को उबरने नहीं देता तेरा हबशी, हज़र को अबू ज़र तेरी बख्शिश ने किया है।

अभी सूरज नहीं डूबा, जरा शाम होने दो। अभी सूरज नहीं डूबा, जरा शाम होने दो। मैं खुद ही लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम होने दो। मुझे बदनाम करने के बहाने ढूंढते हो क्यों? मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले नाम होने दो। अभी मुझको नहीं करना एतराफ़े शिकस्त तुमसे, अभी मुझको नहीं करना है एतराफ़े शिकस्त तुमसे। मैं सब तस्लीम कर लूंगा, ये चर्चा आम होने दो। मेरी हस्ती नहीं अनमोल, फिर भी बिक नहीं सकता।

अभी सूरज नहीं डूबा, जरा शाम होने दो, मैं खुद ही लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम होने दो। अभी मुझको नहीं करना है इतराफ़े शिकस्त तुमसे दो, मेरी हस्ती नहीं अनमोल फिर भी बिक नहीं सकता, वफाएं बेच लेना बस जरा नैलाम होने दो, नए आगाज में ही हौसला क्यों छोड़ बैठे, नए आगाज में ही हौसला क्यों छोड़ बैठे हो, तुम सब कुछ जीत जाओगे, जरा अंजाम होने दो।

क्या खूब लिखा है किसी ने, बख्श देता है खुदा उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, बख्श देता है खुदा उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, वो हरगिज नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है। न मेरा एक होगा न तेरा लाख होगा, न तारीफ होगी न मजाक मेरा होगा, गरूर न कर शाहे शरीर का, मेरा भी खाक होगा तेरा भी खाक होगा। जिंदगी भर ब्रांडेड ब्रांडेड करने वालों याद रखना, कफन का कोई ब्रांड नहीं होता।

मोहब्बत की तमन्ना है तो फिर वो वसफ पैदा कर। जहां से इश्क चलता है वहां तक नाम पैदा कर। अगर सच है मेरे इश्क में तो ऐ बनी आदम नगाहे इश्क पैदा कर, जमाले जर्फ पैदा कर। मैं तुझको तुझसे ज्यादा चाहूंगा मगर शर्त ये है कि मैं के अपने अंदर मेरी जुस्तजू तो पैदा कर। अगर न बदलूं तेरी खातर हर चीज तो कहना, तू अपने आप में पहले अंदाजे वफा तो पैदा कर।

हमारा सारा पस मंजर, हमारा सारा मंजर इंसानों से है। गौर किया जाए तो कोई इंसान इंसानों की वाबस्तगी के बगैर रह नहीं सकता। मसलन मेरे पास सिर्फ आंखें हैं, नजर है, लेकिन मेरा मंजर इंसानों के चेहरे से बना है। अगर मंजर ना हो तो नजर किस काम की। इसी तरह मेरी समात मोहताज है इंसानों की आवाज की। मेरे मजाफात, मेरे इर्द गिर्द बोलने वाले इंसानों का हजूम ना हो तो मेरे कान बेकार हो जाएं। अल्लाह ताला ने इंसान को बयान अता फरमाया, ये बड़े गौर का मकाम है कि बयान सुनने वाला ना हो तो बयान क्या बयान होगा। मेरी जुबान मोहताज है सुनने वाले कानों की, मेरा दिल मोहताज है इंसान के चेहरे की मोहब्बत का। मेरे जज्बात, मेरे एहसासात सब इंसानों से वाबस्ता है। मुझे रहनुमाई चाहिए किसी इंसान के जरिए अल्लाह की मंजिलों तक पहुंचाने वाला अल्लाह का बंदा ही होगा। मैं नेकी, बदी, गुनाह, सवाब, खुशी और गम जो कुछ भी हासिल करूंगा इंसान के जरिए। मेरी जिंदगी इंसानों के जरिए से गुजरेगी। हमें बात समझ में नहीं आती है मेरी प्यास बुझाने वाले पानी कितने हाथों की मेहनत का नतीजा है। हमारे पांव के नीचे जो सड़क है, इसके बनने में कितने साल और कितने इंसानों के पसीने लगे हुए। आंख खोल के चले तो इंसान को इंसानों के एहसानात नजर आएंगे। इन इंसानों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला का इरशाद है, जिसने इंसान का शुक्रिया अदा ना किया उसने खुदा का क्या शुक्रिया अदा करना है। जिस इंसान ने मां बाप को परवरिश करते हुए देखा और उन्हें ना माना, उसने खुदा को देखे बगैर क्या मानना है। अल्लाह ताला इंसानों ही की दुनिया में अपने जलवे दिखाता है। इंसान खामोशी से दुआ मांगता है, अल्लाह खामोश दुआओं को सुनता है, दिल में उठने वाले ख्यालात को सुनता है और फिर उन्हें मंजूर फरमाता है। अल्लाह के जलवे इंसानों के रूप में हर हर जगह नजर आ सकते हैं। ये जहां अल्लाह की निशानियों से बड़ा परा है। अल्लाह के बंदू ने अल्लाह की याद के चिराग जला दिए और इन चिरागों की रोशनी में आने वाले इंसानों को नई मंजिलों पर चलने की तौफीक दी। यहां एक बात और बताता चलूं, कभी कभी दिल में उठने वाले जो ख्यालात होते हैं वो अच्छे भी हो सकते हैं और कभी बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह उन पर गिरफ्त नहीं फरमाते जब तक वो अमल पैरा ना हो जाए। अल्लाह सुबहान व तआला हमें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो अल्लाह के बंदू ने अल्लाह की याद के चिराग जला दिए, वो सुनता है, वो कबूल फरमाता है और इन चिरागों की रोशनी में आने वाले इंसानों को नई मंजिलों पर चलने की तौफीक दी। अल्लाह की तलाश बहुत आसान है, वो इंसानी शारक से करीब है, बहुत करीब, लेकिन इस तक रसाई हासिल करना इसलिए मुश्किल है कि इंसान इंसान है और अल्लाह अल्लाह। हादस कदीम नहीं हो सकता और कदीम हादस नहीं हो सकता, बस फर्क यही है कि हम साजिद हैं वो मस्जूद। हम पैदा होते हैं और मर जाते हैं और वो पैदाइश और मौत से आजाद हय्यु कयूम है। वो हर आगाज से पहले मौजूद था और हर अंजाम के बाद मौजूद रहेगा। वो इतना करीब है लेकिन उसे देखा नहीं जा सकता। जिस तरह हम अपनी बेनाई को खुद नहीं देख सकते, लेकिन बेनाई हमारे करीब रहती है, हमारी रूह हमारे पास है लेकिन हम इसे देख नहीं सकते। हमारी जात हर वक्त हमारे साथ है लेकिन अपनी जात का दीदार मुमकिन नहीं। समंदर में रहने वाली मछली समंदर को देख नहीं सकती, पानी से निकले बगैर वो कैसे देख सकेगी? और अगर पानी से निकलेगी तो समंदर नजर नहीं आता, और पानी से
निकले तो मछली मछली नहीं रहती। बस अल्लाह के जलवे पास हैं, साथ हैं, लेकिन क्या है और कहां है सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और अल्लाह की मोहब्बत की इंतहाई अमली शक्ल अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और मोहब्बत में है। अरशाद बारी ताला है कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि अगर तुम लोगों को अल्लाह से मोहब्बत है तो मेरी इताअत करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। यानी अल्लाह की मोहब्बत

0: Azad.
1: Would you like to sponsor the Azan? If so, give us a call on 01582-481-810 or email us on info@inspirefm.org.
2: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.
3: In this dino mein, main us kitab ka khulasa aapke samne pesh karna cha raha hoon. और इस एक सवाल का हम जवाब ढूंढ रहे हैं. मैं अपने लिए, मैं आपके लिए भी नहीं, मैं सिर्फ अपने लिए इस एक सवाल के जवाब में ये बात पेश कर रहा हूँ. मेरे नज़दीक कुरान इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं?

0: कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करना है जो वक्त की कैद में फंसा हुआ ना हो तो वो फेल तो हो नहीं सकता, वो क्या होना है?
1: अल्हम्दुलिल्लाह,
0: यानी उसमें अब वक्त की कैद नहीं रही।
1: दूसरी बात, जब फेल होता है ना कोई काम तो उसका फाइल भी होता है, करने वाला।
0: मैंने कहा था मैं हम्द करता हूं, करने वाला कौन हुआ?
1: मैं।
0: अगर मैं कहूं हम हम्द करते हैं तो करने वाले कौन हुए?
1: हम।
0: अगर मैं कहूं तमाम मखलूक या तमाम कायनात हम्द करती है तो करने वाले कौन हुए?
1: तमाम कायनात।
0: लेकिन जब मैं कहूं हम्द अल्लाह के लिए है, जैसे कुरान ने कहा है अल्हम्दुलिल्लाह हम्द अल्लाह के लिए है, किसी करने वाले का जिक्र है
1: ना?
0: हम्द अल्लाह के लिए में वक्त की कैद नहीं है और किसी करने वाले का जिक्र नहीं है, क्योंकि तमाम कायनात हो ना हो हम्द हमेशा रहेगी। हम्द इस कायनात से पहले भी थी, हम्द इस कायनात के बाद भी होगी। ऐसी हम्द अल्लाह ताला की जो ना वक्त की कैद में हो ना किसी के हम्द करने वाले की कैद में हो।
1: सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।
0: अगर कहा होता यहमदु जमीउल खलाइक अल्लाह या यहमदुल्लाह जमीउल खलाइक, तमाम मखलूकात अल्लाह ताला की हम्द करते हैं या करते थे या करते रहेंगे, तो फिर हम एक तरह से कम हो जाती, उसका दारोमदार होता मखलूक पर। मखलूक है तो हम्द है, मखलूक नहीं तो हम्द नहीं। अगर मैं कहूँ मैं हम्द करता हूँ, मैं हूँ तो हम्द है, मैं नहीं तो हम्द नहीं। लेकिन अल्लाह ताला कहता है हम्द अल्लाह की है, मैं हूं ना हूं हम्द फिर भी है। इससे एक और बात भी सामने आती है, जिन लोगों का अल्लाह ताला पर ईमान नहीं है ना, वो कहते हैं यार तुम क्या कैसे खुदा की इबादत करते हो, तुम्हें क्या मुसीबत है, इस खुदा को क्या जरूरत है कि वो तुम उसके सामने नमाजें पढ़ो सजदे करो, क्या शौक है उसे अपनी तारीफ करवाने का? क्योंकि दुनिया में जिसको अपनी तारीफ करवाने का शौक है वो बहुत मुतकब्बिर होता है। तो ये किस किस्म का खुदा है तो उसको अपनी तारीफ करवाने का शौक है? उसके जवाब में अल्हम्दुलिल्लाह काफी है। यानी जब कोई मखलूक थी भी नहीं तब भी उसकी हम थी। इसी तरह सूरतुर रहमान में अल्लाह ताला ने ये बात समझा दी है, कहा है कुल्लु मन अलैहा फान वयबका वजहु रब्बिका ذو الجلال والإكرام। देखें जलाल किस चीज को कहते हैं, जलाल कहते हैं जब किसी बादशाह की बादशाही को बयान किया जा रहा हो ना, वो जलाल होता है। और क्या अजीम शान आपकी सल्तनत है या जो भी है, तारीफ की जा रही है। जलाल आजकल क्या होगा, कोई चैंपियनशिप जीत जाए, कोई मैच जीत जाए, जो जो फैंस कर रहे होते हैं ना वो तजलील कर रहे थे, वो जलाल दिखा रहे होते हैं उसका। अगर कोई अकेला एक आइलैंड में बंदा या एक मैदान में कोई बड़ा कारनामा कर ले, कोई इर्द गिर्द कोई तारीफ करने वाला नहीं हो, तो उसकी जलाल हुई या नहीं हुई? जलाल करने के लिए आपको, जलाल होने के लिए आपको जलाल करने वाले चाहिए, कोई तारीफ करने वाला चाहिए, तब तारीफ होगी ना। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी इस दुनिया में, जब कुल्लू मन अलैहा फान, तमाम फानिया हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन तेरे रब का चेहरा ज़ुल जलाल, जलाल वाला बाकी रहेगा। जलाल करने वाले, कोई तारीफ करने वाले हैं हो ना हो वो बाकी रहेगा। ये है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आगे,
2: We hope that you enjoyed this episode. Subscribe now to the Bayana YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Norman Ali Khan.

0: يولون فسيسألكم عن أعمالكم. And he's going to ask you about what you used to do. We are still in a deep state of acoma, and we are truly not appreciating the enormity of what is coming our way. Why? Because failing an exam today is to do a retake tomorrow. Failing the exam in front of Allah is to fail in our eternity. قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Allah said, the true loss is when a person loses himself and his family on the day of judgment. أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. That indeed is the manifest loss. We ask Allah to protect us from this outcome and to inspire us with aid and tawfiq to prepare well in advance of our meeting with our Honorable Lord Subhanahu.
1: अगर आपको शक है कि आपके पड़ोसी किसी मुश्किल में हैं, कोई चोर या डाकू इनके घर में घुस गया है या इनके घर का सिक्योरिटी अलार्म बजना शुरू हो गया है, तो फौरी तौर पर पुलिस को आगाह करें। आपके इस अमल से आपके पड़ोसी की जान या इनका साजो सामान बच सकता है। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।